सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो। आप सुन रहे हैं हमारे साथ बॉलीवुड ट्रेल्स, जहां पर क्रिकेट जगत की खबरें जो है वो हमने अब तक पहुंचाई स्टम्प्ड, जो हमारा विशेष प्रोग्राम है उसके माध्यम से, और वापस लौट चुके हैं वापस बॉलीवुड की बातें करने के लिए। दोस्तों, एक छोटा सा सवाल आपको दिए जा रहा हूं यहां पर, क्योंकि बहुत ही प्यारा वाला गाना जो है वो मैंने यहां पे क्यों किया हुआ है वो बजाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मुझे सिर्फ इतना बताना है बॉलीवुड सरताज बनने के लिए कि जो कांस फेस्टिवल है वो किस राष्ट्र से, किस देश से संबंधित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही फटाफट आंसर आप मुझे।